नमस्कार, ये आकाशवाणी एडलेड है और आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 का FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। दोस्तों, आज 6 मई 2026 बुधवार का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं और इस वक्त एडलेड का टेम्परेचर बाहर 14 डिग्री है और आने वाले दिनों में, अभी तो काफ़ी 3-4 दिन से बारिश चल रही है और आने वाले दिनों में मौसम सुहावना बना रहेगा, थोड़ी थोड़ी बारिश होती रहेगी और हल्की हल्की ठंड पड़ती रहेगी। तो ये एक परफेक्ट जो है, हम इस वक्त जो है हम ऑटम के मौसम में हैं और एकदम सही जा रहे हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है, जिसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी गार्डन के लिए खासकर। तो चलिए बारिश को भी इन्जॉय करते हैं और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम को भी इन्जॉय करेंगे। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है मेरे पास दोस्तों, हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ तक, फिजिकल हेल्थ से लेकर मेंटल हेल्थ तक बातचीत करेंगे। कुछ टेक ज्ञान भी दूंगा आपको साथ ही साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे पास आज कुछ है। लेकिन सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं इस गाने से।

चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ हेल्थ के बारे में। ऐसी पांच आदतें जो कि आपको स्वस्थ रखने में बहुत ही हेल्प करेंगी। और दोस्तों, सेहत जो होती है वो दवाइयों से नहीं बल्कि हेल्दी हमारी आदतों से है, और यही है लंबी उम्र का जो है एक साइंटिफिक फॉर्मूला। क्योंकि लंबी उम्र का रास किसी चमत्कारी दवा में नहीं है बल्कि जो हम डेली एक्टिविटीज़ में ही हमारी आदतों में ही छिपा है। तो जैसे कि इस साल आपका असली ध्यान अपने कार्डियो मेटाबॉलिक जोखिम को कम करने पर होना चाहिए, जैसे ब्लड शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर, ख़राब कोलेस्ट्रॉल, पेट की चर्बी और शरीर में जैसे कहीं अगर आपके स्वेलिंग हो, और साथ ही मांसपेशियों को मजबूत, शरीर को एक्टिव और दिमाग को तेज़ रखना भी ज़रूरी है। तो बात करते हैं इन्हीं कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो कि हेल्पफुल हो सकती है इस चीज़ को अचीव करने के लिए। जैसे कि हर हफ्ते आप पर्याप्त एक्टिविटी करें, जैसे हर हफ्ते 150 से 300 मिनट चलना, यानी कि 5 घंटे, 300 मिनट बोलो तो 5 घंटे चलना, दौड़ना या कोई भी एक्टिविटी करने से हमारे जो हार्ट है और हमारी लंग्स की क्षमता, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, और मूड और ब्लड प्रेशर जो इससे इम्प्रूव होता है। और अगर समय कम हो तो छोटे मूवमेंट अपनाएं, जैसे खाने के बाद 10 मिनट चलना या दिन में 3 बार 5-5 मिनट ब्रिस्क वॉक करना। द लेसेंट पब्लिक हेल्थ की स्टडी के मुताबिक रोज़ाना 7,000 स्टेप्स चलने से मौत का जोखिम 47% कम होता है, और दिल की बीमारी का खतरा 25%, और कैंसर से मौत 37%, और टाइप 2 डायबिटीज़ 14%, और डिमेंशिया 38%, और डिप्रेशन भी 22% तक कम हो सकता है। तो आप सोचिए, इतने एक थोड़ा सा वॉक करने से कितनी सारी जो बीमारियाँ हैं उनका खतरा कम हो सकता है। और जैसे कि 40 साल की उम्र के बाद जो हमारी मांसपेशियां घटने लगती हैं, इसलिए हफ्ते में 60 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, जैसे चेयर स्क्वाट्स हो गए, वॉल पुशअप्स हो गए, या बेंड रोए मांसपेशियां हड्डियों और जोड़ों को जैसे ये मजबूत बनाती हैं। और ज़्यादातर दिन जैसे कि होल फूड पैटर्न चुने, लंबी उम्र और बेहतर सेहत के लिए भोजन जो वो जितना हो नेचुरल और जो खाद्य पदार्थों पर आधारित होना चाहिए, जैसे खाने में आधी प्लेट सब्जियां, वेजिटेबल्स हो गई, एक मुट्ठी प्रोटीन, एक मुट्ठी कार्ब्स, और जैसे कि आप योगर्ट या जो लस्सी होती है छाछ शामिल करें। ये पैटर्न शरीर, दिल और दिमाग को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में मेडिटेरेनियन डाइट अपनाने से किसी भी कारण से मौत का जोखिम 23% कम पाया गया है। और प्रोटीन और फाइबर को प्राथमिकता दें, ये दोनों पोषक तत्व भूख को कंट्रोल करने में और मेटाबॉलिक सेहत से सीधे जुड़े हैं। जैसे प्रोटीन मांसपेशियों को बचाता है, और फाइबर जो होता है हमारे गट माइक्रोबायोम और शुगर कंट्रोल सुधारता है। जैसे अमेरिका की एक स्टडी में ज़्यादा प्रोटीन खाने वालों में मांसपेशियों को नुकसान 40% तक कम पाया गया। इसलिए हर मील में प्रोटीन, जैसे कि अंडा हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, दाल हो गई, दही, और रोज़ कम से कम 2 फाइबर सोर्स जो है अपने उसमें शामिल करें। और ज़रूरी है कि एडिड शुगर घटाएं, खासकर लिक्विड शुगर, जैसे शुगरी ड्रिंक्स, जैसे चाय वाली चीनी, चाय कॉफ़ी, पैकेट जूस और सॉफ्ट ड्रिंक्स शरीर में ग्लूकोज को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं और एक्स्ट्रा कैलोरीज देते हैं। WHO के मुताबिक रोज़ाना कुल कैलोरी का 10% से कम शुगर लेना चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य और बीमारी के जोखिम करने के लिए ये 5%

0: Asian fusion and authentic Indian. With a relaxing seating arrangement for dine-in and takeaway options at our two locations, Mother India Kitchen, Port Road, Alberton 08711-26878 and Cinnamon Curry, Findon Road, Woodville South 08708032001. You can contact for your private or official functions. We are proudly announced that Mother India Kitchen and Cinnamon Curry are the sponsors of this program.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 PBI 103.1 FM का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दोस्तों अब बात करते हैं जो आजकल रील्स के लोग झांसे में आ रहे हैं, जो ये फिन इन्फ्लुएंसर्स कैसे लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं और इसी बीच कोई पैसे को दुगना करने का आपको सुझाव दिखाई दे या फिर किसी स्टॉक या क्रिप्टो में निवेश करने करके कम पैसे में समय बनाने का अचूक नुस्खा बताता दिखे, तो संभव है कि पहले आप उस रील को पूरा देखेंगे और इस बात की संभावना है कि कुछ मिनटों में किसी ऐप को डाउनलोड करके उस पर कोई अपना अकाउंट खोलना शुरू कर दें। दरअसल हज़ारों लोग ऐसे ही कर रहे हैं, वे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर वीडियो देखकर नए इन्वेस्टर बन गए हैं। एक समय था जब पैसे का निवेश जो है या बचत करना बहुत ही नीरस या गंभीर विषय माना जाता था, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। आज के समय में निवेश और बचत की सलाह दादी दादा के ज़माने से बिल्कुल अलग है। नए निवेशक जो नए इन्वेस्टर्स हैं कम समय में अधिक लाभ पाने का कोई मौका चूकना नहीं चाहते, इस जिसके लिए एक शब्द है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इस बेचैनी का लाभ उठाते हैं फिन इन्फ्लुएंसर्स जो बीते कुछ वर्षों से इंटरनेट मीडिया पर मशरूम की भांति उगाए हैं। पैसे बनाने की

इस बेचैनी के चलते बहुत से लोग स्कैम का भी शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों ये खतरा जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड है। अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते वर्ष इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लोगों ने स्कैमर्स के हाथों $2.1 बिलियन गंवा दिए हैं। और दोस्तों इसमें क्योंकि लोगों की जो डिजिटल और वित्तीय साक्षरता की स्थिति तो और भी चिंताजनक है, और यही कारण है कि इंटरनेट मीडिया पे आए दिन ठगी के मामले आते रहते हैं। हालांकि निवेश के फर्जी सलाहकारों पर नकेल के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जैसे कि इंटरनेट मीडिया पर वीडियो और ऐप्स के ज़रिए फर्जी निवेश के लिए उकसाने, और यहाँ तक कि डीप फेक एआई के ज़रिए नेताओं के माध्यम से लोगों को पैसा लगाने के लिए आकर्षित करने जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं दोस्तों। तो अब बात ये कि कैसे फंस जाते हैं दोस्तों आम यूज़र। नए जो दोस्तों इन्वेस्टर्स हैं को बैंकिंग ऐप से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक निवेश के नए और अनोखे विकल्प मिल गए हैं। ऐसे ही लाखों खुदरा निवेशकों को इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर वित्तीय मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि यहाँ तक कि कोई इन्फ्लुएंसर्स के पास तो कोई योग्यता भी नहीं है उनके पास कुछ भी, फिर भी वो इंटरनेट मीडिया पर अपने व्यापक फ्लोइंग एंगेजमेंट जो हो गई उनकी रणनीति और लोगों से जुड़ाव की कला उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और कई बार वो ऐसे जोखिम भरे ट्रेडिंग सुझाव देते हैं साथ ही जो कोई पारंपरिक वित्तीय सलाहों के विपरीत भी व्यवहार करते हैं। ज़्यादातर फॉलोअर्स को ये पता ही नहीं चलता कि जिस इन्फ्लुएंसर पर वो भरोसा कर रहे हैं वह इंटरनेट मीडिया से पैसे कमाने के लिए केवल उनको एक दिखावटी कंटेंट दिखा रहा है। तो इन्फ्लुएंसर की कमाई कई बार क्रेडिट कार्ड और फिनटेक कंपनियों के स्पॉन्सर्ड कंटेंट से भी होती है। फॉलोइंग ही इंटरनेट मीडिया की सबसे बड़ी करेंसी है दोस्तों, ना कि क्वालिटी या क्वालिफिकेशन। जिस इन्फ्लुएंसर के पास जितनी फॉलोइंग होगी उतना ही उसका सम्मान होगा और लोग उस पर विश्वास भी करेंगे। तो ऐसे लोगों की जो उपस्थिति होती है वो YouTube, Instagram, Facebook समेत तमाम प्लेटफॉर्मों पर दिख जाती है। अब जब तक कुछ ही समय में करोड़पति बनने का सपना देख रहे होंगे तब तक ऐसे लोग भी किसी न किसी रूप में मौजूद रहेंगे। हमें पता है कि जंक फूड नुकसान करता है, फिर भी बाज़ार में उसकी भरमार है क्योंकि उसके बहुत सारे खरीदार मौजूद हैं। कुछ ऐसा ही इन्फ्लुएंसर्स के मामले में भी है। किसी सामान को खरीदने से पहले जिस सतर्कता से हम उसे देखते हैं उसी तरह किसी के विचारों के प्रभाव में आने से पहले भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है। हमें समझना होगा कि कंटेंट केवल विचार ही नहीं होते बल्कि वे आज के समय में प्रोडक्ट की तरह बेचे जा रहे हैं। और आज के समय में दोस्तों सबसे बड़ा जोखिम बाज़ार की अस्थिरता नहीं है बल्कि इन्फ्लुएंस होना है। इंटरनेट मीडिया ने निवेश को आसान, तेज और ग्लैमरस बना दिया है। इन्फ्लुएंसर्स अक्सर रिटर्न दिखाते हैं, रिस्क नहीं, वो परिणाम दिखाते हैं, उसका प्रोसेस नहीं दिखाते हैं। इससे अवास्तविक उम्मीदें पैदा होती हैं और निवेशक भीड़ का हिस्सा बनकर ट्रेंड के पीछे भागने लगते हैं और बुनियादी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। भरोसा करने से पहले पुष्टि करना ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि दौलत चुपचाप बनती है, शोर शराबे के साथ नहीं। अच्छा निवेश बोरिंग और निरंतर और व्यक्तिगत पर्सनल होता है। अगर ये उत्तेजक यानी कि एक्साइटमेंट वाला अर्जेंट या बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है तो यह गलत भी हो सकता है। जहां सुझावों की भरमार हो वहां स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमेशा प्लान को फॉलो करना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति को। और इन्फ्लुएंस का दावा या उनकी बातें कितनी उपयुक्त हैं इसे आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर पता कर सकते हैं। इससे आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे।
तो जैसे कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करता है या आपको निवेश के लिए प्रेरित करता है, तो आप पहले उसकी योग्यता को जांचें, क्या उसके पास कोई सर्टिफिकेशन, फाइनेंस बैकग्राउंड, कोई रजिस्ट्रेशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो रुक जाएं और अपनी समझ का इस्तेमाल करें दोस्तों, दूसरों की बातों में आकर नहीं। चलिए अब सुनते हैं एक गाना।

0: seeking a genuine assortment of spices and authentic Desi products? If so, a visit to Royal India Groceries is indispensable. Transporting you to the heart of India, it offers an exploration into Desi culture. Situated on Marion Road in South Plympton, Royal India Groceries welcomes visitors 7 days a week. For any queries or further information, please reach out on 0883710051.
1: दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कुछ पावर बटन के ट्रिक्स के बारे में. जैसे कि लोग सिर्फ स्मार्ट लोग ही जिसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं. मैं भी अभी तक वैसे इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन अब मुझे पता लग गया है तो मैं भी स्मार्ट बन गया हूँ, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप भी स्मार्ट बन जाएं अगर आप ये यूज़ नहीं करते हैं तो. जैसे आज भी बहुत से लोग अपने स्मार्टफोन के पावर बटन का इस्तेमाल सिर्फ उसे ऑन या ऑफ़ करने के लिए करते हैं, जो साइड में होता है छोटा सा बटन आपके. लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि ये छोटा सा बटन जो फ़ोन के राइट पे होता है, जैसे मेरे पास सैमसंग है तो उसके राइट पर है ये छोटा सा बटन, पावर बटन, आपके फ़ोन के कई फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और सही सेटिंग्स के साथ आपका पावर बटन कई कामों को आसान बना सकता है, जिससे आपके फ़ोन का इस्तेमाल बहुत आसान और स्मार्ट हो जाएगा. तो इसी बारे में बात करते हैं. अब जैसे कि क्विक कैमरा एक्सेस, आईफोन में तो आजकल खास कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है, लेकिन अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें भी पावर बटन को कैप्चर बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं. जैसे कई बार कोई खास पल एकदम से आपके सामने आ जाता है और कैमरा खोलते खोलते जैसे कि हम अपना कोड डालते हैं या करते हैं तो कैमरा खोलते खोलते वो मौका मिस हो जाता है. ऐसे में अगर आप अपने पावर बटन को दो बार प्रेस करके सीधे कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, और इससे कैमरा भी कुछ ही सेकंड्स में खुल जाएगा और आप फटाफट फोटो क्लिक कर सकते हैं. और जैसे आजकल आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में पावर बटन को होल्ड करने पर एआई असिस्टेंट जैसे जेमिनी या दूसरे वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाते हैं. इसके ज़रिए आप कोई भी उससे सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को कॉल कर सकते हैं, या फिर कई छोटे छोटे काम बिना फ़ोन को हाथ लगाए करवा सकते हैं. और जैसे अंधेरे में कई बार फ़ोन की फ्लैश ऑन करने के लिए फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कई फ़ोन्स में पावर बटन से टॉर्च ऑन या ऑफ़ करने का ऑप्शन भी मिलता है. ऐसे में बस आप एक बार सेटिंग्स में जाकर इस फीचर को एक्टिव करके ज़रूरत पड़ने पर एक प्रेस से टॉर्च ऑन कर सकते हैं. और पावर बटन पर आप इमरजेंसी SOS फीचर भी सेट कर सकते हैं. सुरक्षा के लिहाज से पावर बटन का सबसे अहम इस्तेमाल इमरजेंसी SOS फीचर में किया जाता है. अगर ये सेटिंग ऑन हो तो पावर बटन को 3 या 5 बार दबाने से फ़ोन अपने आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को लोकेशन और ज़रूरी जानकारी सेंड कर देता है, तो मुश्किल वक्त में ये फीचर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है. और फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर आप इसे अपने आने वाली इनकमिंग कॉल को कट करने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं. जैसे आप अपने पावर बटन को प्रेस करेंगे टू एंड कॉल करने ऑप्शन को करने के बाद, आप सिर्फ एक बार पावर बटन दबाकर किसी भी जैसे आप कॉल को एंड कर सकते हैं. तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो अभी तक मुझे, मैंने भी वैसे यूज़ नहीं करी थी, लेकिन अब पता लग गई है तो अब इनको करके ज़रूर स्मार्ट बनेंगे. चलिए सुनते हैं ये गाना.

0: for setting up of tax-effective business structures, tax advice, business activity statements, and income tax returns, please contact LSM & Co. Chartered Accountants. Individual tax return fees start from only $77. Conditions apply. You can find them at 212 Prospect Road Prospect or call them on 8342 3923. LSM & Co., a sponsor of this program.
1: दोस्तों अब बात प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा एक आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि एक परफेक्शनिस्ट लोगों के बारे में है। दोस्तों जैसे कि जो परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं वो केवल सिर्फ ज़्यादा मेहनती या डिटेल पर ध्यान देने वालों की बात नहीं है बल्कि शुरू में परफेक्शन की आदत आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन जब यही आदत काम पूरा करने से रोकने लगे और डेडलाइन में सोने लगे और नए मौके लेने से डर लगने लगे तो हमें इसको थोड़ा अलग तरह से समझने की ज़रूरत है। अब जैसे कि परफेक्शन जो है एक अच्छी आदत है, शुरू में ये आगे भी बढ़ाती है, लेकिन परफेक्ट होने की इच्छा अगर काम पूरा करने से ही रोकने लगे और हमारी डेडलाइन मिस होने लगे तो ये एक पॉजिटिव संकेत नहीं है। इसके पीछे कोई एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी है। हेल्दी परफेक्शनिज्म, अब जैसे अपने लिए हाई स्टैंडर्ड रखना अपने आप में कोई समस्या नहीं है, परफेक्शनिज्म एक अच्छी बात हो सकती है अगर वो हेल्दी परफेक्शनिज्म हो। जैसे कि ये आपको अनुशासित बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है, अपने काम में गर्व महसूस कराता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है, डिटेलिंग पर ध्यान देना सिखाता है और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है। और ये सभी बहुत अच्छे गुण हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं। अब एक चीज़ होती है कि अनहेल्दी परफेक्शनिज्म, जैसे कि लेकिन अब सवाल यह है कि हेल्दी परफेक्शनिज्म कब अनहेल्दी यानी नुकसानदायक परफेक्शनिज्म में बदल जाता है, और समस्या तब शुरू होती है जब आपके हाई स्टैंडर्ड के साथ एक तरह का डर जुड़ जाता है। तब व्यक्ति अच्छा और परफेक्ट काम सिर्फ अच्छा करने के लिए नहीं करता, वह ये काम किसी डर से करता है, जैसे कि गलती होने का डर, लोगों की आलोचना का डर, शर्मिंदगी का डर, ये डर कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो इसके पीछे अक्सर कुछ छुपे हुए विश्वास काम कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर मैं परफेक्ट काम करूँगा तभी लोग मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, तभी मैं सेफ या कंट्रोल में रहूँगा। और इसके उलट ये डर सताता है कि अगर गलती हुई तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे एम्बैरेसमेंट होगी, लोग मुझे कमतर समझेंगे। और ऐसा सोचने पर व्यक्ति सच को बहुत ही एक लिमिटेड फ्रेम में देखने लग जाता है, जैसे परफेक्ट या फेल, तारीफ या फिर शर्मिंदगी एम्बैरेसमेंट, मंजूरी या फिर रिजेक्शन, एक्सेप्शन या रिजेक्शन, और आसमान या फिर सीधे पाताल। और इसका असर मानसिकता पर भी इस मानसिकता का असर काम पर भी पड़ता है और धीरे धीरे कुछ पैटर्न बनने लगते हैं दोस्तों, जैसे कि बार बार अपना काम चेक करना, छोटी छोटी चीज़ों में उलझना, काम पूरा करने में देरी, दूसरों को काम देने में हिचक, और सब कुछ खुद ही करने की इच्छा, कोशिश करना, नया काम करने या रिस्क लेने से बचना, काम अच्छा होने के बावजूद संतुष्टि ना मिलना। सो बाहर से देखकर लगता है कि ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन अगर भीतर उतर कर देखें तो यहाँ एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट का एक खेल चल रहा होता है। तो दोस्तों परफेक्शनिज्म अब आपकी मदद नहीं है करता कई बार, बल्कि आपकी परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा रहा है अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो। और डेडलाइन मिस करना, नए काम से बचना और डिटेल में फंस जाना, ये संकेत है कि स्टैंडर्ड अब काम जो है काम की ज़रूरत के अनुसार नहीं है, और समस्या क्षमता की नहीं बल्कि गलती का डर इतना बढ़ गया है कि काम करने की क्षमता दब गई है और अच्छा काम परफेक्ट काम के पीछे कुर्बान हो रहा है। तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करें और अगर आपको लगे कि ये टेस्ट के बाद तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है एक ज़रूर ही किसी प्रोफेशनल आपको ये हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, जैसे आजकल काम का दबाव है तो इसमें ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जैसे कि परफेक्शनिस्ट सोच को पहचानना और बदलना, काम करते समय रुककर देखें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। परफेक्ट नहीं है तो मैं सबमिट नहीं कर सकता, अगर गलती हुई तो मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, ये विचार अक्सर अपने आप आते हैं, लेकिन इन्हें नोटिस करना ज़रूरी है। और जैसे कि खुद से सवाल पूछें, रियलिटी चेक, हर विचार को तुरंत सच मानने की बजाय जैसे सवाल करें, ऐसे सच में पहले ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? हर छोटी गलती पर मुझे लोग मुझे जज करते हैं क्या? कोई ऐसा एग्जांपल है जब परफेक्ट ना होने पर भी काम ठीक चला? तो इससे आपको लगेगा कि अक्सर आपका डर अक्सर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बैलेंस्ड सोच बनाएं, काम उपयोगी या समझ में आने वाला होना चाहिए, हर बार परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। समय पर काम, अच्छा काम देना देने से बट देर से परफेक्ट काम देने से बेहतर है। तो रादर देन कोई काम को डिले करें, एटलीस्ट टाइम पर आप जो है काम दे रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, रोकती नहीं है। अब जैसे डेली यूज़ के लिए एक छोटा सा अभ्यास है, जब भी अटके तो ये 3 स्टेप फॉलो करें। मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्या यह पूरी तरह सच है या मेरा डर है, और क्या इसका एक ज़्यादा बैलेंस्ड जवाब हो सकता है। और दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक एंड वाइट सोच छोड़ें। आप जीवन को ब्लैक एंड वाइट तरीके से देखते हैं और सोचते हैं जैसे ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, छोटी सी गलती मतलब पूरा काम खराब, काम होने पर भी कोई संतुष्टि नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर काम 100% परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, 80-90% तक होना भी अच्छा होना भी काफ़ी है। तो इस स्केल में सोचना शुरू करें, जैसे 0 से 10, क्या ये काम 10 में से कितना अच्छा है। और अगर आपका जवाब अपने से ही है कि अगर ये 7-8 है तो ये काम अच्छा है, तो इस सोच से एक संतुलन आता है, मध्यम मार्ग समझ में आता है। और गलती को फेलियर नहीं फीडबैक माने, हर गलती सीखने के प्रोसेस का हिस्सा है। गलती का मतलब ये नहीं कि पूरा काम ही खराब हो गया है, और काम की अहमियत के अनुसार इम्पोर्टेंस के अनुसार मेहनत करें। जैसे कि काम को आप कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं, हाई प्रायोरिटी ऐसे काम को जो आपके करियर टीम या रिजल्ट पर सीधा असर डालते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन, कोई क्लाइंट की रिपोर्ट या परफॉर्मेंस से जुड़ा काम, इसमें डिटेलिंग क्वालिटी और समय तीनों पर ध्यान दें। और जैसे मीडियम प्रायोरिटी हुआ ऐसे काम जो ज़रूरी हैं लेकिन उनमें परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जैसे इंटरनल अपडेट्स, टीम नोट्स, कोई जनरल रिपोर्ट, काम स्पष्ट सही और समझ में आने वाला होना चाहिए लेकिन डिटेलिंग में उलझना ज़रूरी नहीं। और लो प्रायोरिटी, बस पूरा करना है, जैसे जिन काम का असर बहुत कम है, जैसे रूटीन ईमेल, छोटे टास्क, फॉर्म भरना, जल्दी और सिंपल तरीके से ख़त्म करें, और यहाँ सोचने और सुधारने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अगर आप कुछ इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। और चलिए अब सुनते हैं एक गाना।

0: Thinking about a home loan, car loan, or refinancing in Adelaide? Mortgage Choice's Jags Lakhani is your local mortgage advisor in South Australia, ready to give you expert support that reflects your needs. Need a first home loan, investment, SMSF, personal or construction loan, or even car and business lending? Jags works with over 35 plus lenders, so you get more choice, more flexibility, more care, and more local support. Whether you're buying, refinancing, or need help finding the right loan, Jags is your trusted partner, guiding you with clarity, honesty, and personal attention every step of the way. Call or email Jags Lakhani today for a free consultation. That's 0451956659 or visit mortgagechoice.com.au/jags.lakhani. Unlock the right way forward.
1: A proud sponsor of 103.15 EBI FM.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 5 EBI 103.1 का भारतीय प्रसारण अमित दुआ के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं एक जापानी स्टडी के बारे में। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रिसर्च कि हफ्ते में एक बार भी खाना पकाने से घट सकती है भूलने की बीमारी। तो दोस्तों घर पर खाना पकाना दिमाग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इस नई स्टडी में कहा गया है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार भी खाना पकाने से डिमेंशिया का खतरा कम होता है। और ये स्टडी हाल ही में BMJ के जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित हुई है। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने 65 साल या ज़्यादा उम्र के 11,000 लोगों को 6 साल तक फॉलो किया। उन्होंने देखा कि ये लोग घर पर अपने लिए कितनी बार खाना बनाते हैं और नतीजे बताते हैं कि जो लोग ज़्यादा बार खाना बनाते थे उनमें डिमेंशिया का जोखिम कम था। रिसर्चर्स ने पाया है कि खाना पकाने में किराना खरीदने से लेकर व्यंजनों और सही सामग्री और अनुपात का चयन जैसे कई जटिल काम शामिल होते हैं। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन के चिड़ियाघर में डिमेंशिया से जूझ रहे लोगों के लिए खास टूर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चिड़ियाघर की आवाज़ें, दृश्य और गंध बचपन की यादों को जगाती है, जिससे मरीजों को मानसिक राहत मिलती है। ये टूर बुजुर्गों की याददाश्त मजबूत बनाने में मददगार हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी खाना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या घर में कोई और कुकिंग करता है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कम से कम वीक में एक बार कुछ ना कुछ डिश ज़रूर ट्राई करें ताकि डिमेंशिया का कोई खतरा ना रहे आपको लाइफ में। चलिए अब जो है सुनते हैं एक गाना।

दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब मुझे यानी कि अमित दुआ को आज्ञा दीजिए, इस अगले गाने के साथ हमारा आज का ये भारतीय प्रसारण यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।